और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोले

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो निकल 90.4 FM, आवाज तुमचा।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: श्रोते हो नमस्कार. गोष्टी तुमच्या आमच्या या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आणि मी आहे तुमची मैत्रीण आर जे ऋतू तुमच्या सोबत. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा. मंडळी, आजच्या आपल्या शो मध्ये आपण एका अतिशय महत्वाच्या विषयावरती संवाद साधणार आहोत. आणि तो विषय म्हणजे राजकीय क्रांतीनंतरचा बांगलादेश. मागील काही महिन्यांपासून बांगलादेशामध्ये अनेक सामाजिक आणि राजकीय घडामोडी घडताना दिसतात. या बदलांचा तेथील सामान्य जनतेवरती, युवकांवरती, तसेच भारत बांगलादेश संबंधांवरती काय परिणाम होत आहेत ना, हे जाणून घेणं तितकंच महत्वाचं आहे. आणि याच विषयावरती चर्चा करण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत गांधी आश्रम ट्रस्टचे विद्यमान सचिव, गेली अनेक दशके शांतता, सद्भावना आणि सामाजिक कार्यात सक्रिय असलेले राहनव कुमारजी. आज आपण यांच्याशी भरपूर अशा गप्पा मारणार आहोत. आणि बांगलादेशामधली आत्ताची जी स्थिती आहे, ज्या अनेक घडामोडी आहेत, त्याबद्दल देखील जाणून घेणार आहोत. सबसे पहले तो नवकुमार जी, आपका रेडियो नगर में बहुत बहुत स्वागत है. सर, आप पिछले कई सालों से गांधी आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो गांधी आश्रम एग्जैक्टली वर्क क्या करता है?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रेडियो नगर के में इनवाइट किया हमको यहाँ पर. हम हिंदी तो अच्छा नहीं आती है, लेकिन आई विल ट्राई टू कंटिन्यू माय स्पीच इन इंग्लिश एंड हिंदी. तो अब जो क्वेश्चन किया है, जो लास्ट 18 मंथ्स में बांग्लादेश जी इंटरिम गवर्नमेंट, उसको बाद नया गवर्नमेंट आया, तो थोड़ा सा चेंज तो है ही ना.
0: अच्छा.
1: 15 ईयर्स शेख हसीना को जो रिजिम था, इसके बाद जो जेन जी जो मूवमेंट किया था फॉर सम रीजंस, दैट वाज वेरी वैलिड रीजंस, बट आफ्टर दैट देयर आर सम इंटरप्शन क्या हुआ, इसके बाद जो जेनजिट को जो आंदोलन था वो डाइवर्ट हो गया इन डिफरेंट वे. हावर इसके बाद लास्ट फेब्रुआरी में फिर इलेक्शन हुआ. इलेक्शन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP दे गॉट ह्यूज सीट्स, मोर देन 2/3 सीट्स. सो दैट रिजल्ट हैज इम्पैक्ट एट द रूरल एरियाज ऑल्सो, lives of the rural people, rural women, rural men, children, sabko. Lekin only it is only 1.5 months after February election mein hua, March, April and early May, it is very difficult to specifically bola ye kya change ho rahi hai.
0: Acha.
1: So one thing is that je students अभी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाना शुरू कर दिया. लास्ट 18 मंथ्स में स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाता था, उल्टा पलटा करता था.
0: अच्छा.
1: टीचर्स को हैरस करता था. लेकिन द ट्रेंड इज ग्रेजुअली चेंजिंग, दिस इज फर्स्ट इम्पैक्ट. सेकेंड इम्पैक्ट हुआ लास्ट 18 मंथ्स में जो बांग्लादेश को जो इकोनॉमी था, वो इकोनॉमी तो ग्रेजुअली डिक्लाइन किया. इसके रिजल्ट में जो कमोडिटीज है, डेली कमोडिटीज, उसको हाई प्राइस हो गया. तो जो आम आदमी है, रूरल पीपल है, पुअर पीपल है, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू परचेज देयर डेली नीड्स.
0: अच्छा.
1: सो दैट इट हैम्पर्स देयर डेली लाइफ एक्चुअली. सो we are looking for the present government, what they take steps to come out from this situation. Because you know, in next June our budget will be take place nationally, that we want to just watch what is coming to the next budget, the tackle the situation. On the other hand, fuel was a huge crisis. In the meantime, we also got some fuel from India government also.
0: Okay.
1: Actually, perhaps 10,000 metric ton or lock, maybe actually, I don't know the actual figure, but use fuel we have received from Indian government also. So this is also, recently the fuel price hiked by the government. So the price of transportation already increased. Price of public transport already increased. So this also create impact on human lives also. गांधी आश्रम का मेन वर्क है कैंपेन फॉर पीस। हम तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में जाते हैं, तो हम पीस के लिए थोड़ा सा प्रोग्राम है हमारा गांधी लाइफ के लिए एक मोबाइल म्यूजियम है, वो एक्सप्लेन करता है जा जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा डायलॉग अरेंज करता है लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नेशनल लेवल इवन, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड अबाउट गांधी एंड व्हाई पीस इज नेसेसरी। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग इन ए नेशनल लेवल दैट क्रिएट सम इम्पैक्ट इन द नेशनली, न्यूज पेपर्स आर कवरिंग ऑल दिस थिंग्स, सो दैट कैन दैट इज द वन वे टू प्रमोट पीस इन द कंट्री। एंड we have some other activities that is also directly connected with peace, non violence and communal harmony in Noakhali. Bangladesh it ko connect karne ne pehle bola je different university colleges and we are going and we are organizing different type of camps, different type of exhibitions so that they can understand Gandhiji and they can understand the importance of peace, non violence and communal harmony. Besides this we have the village level, we have some youth groups in our working, especially in coastal Bangladesh. In every villages, we have just started this last year. Every village, there will have a small groups, youth groups. They will talk for human rights, they will talk for good governance, they will talk for peace and all this. So this is also one kind of involvement of youths in our programs. And we have other programs where you can engage youths. Suppose theater, popular theater show.
0: Achha.
1: So this is also an attractive program for the community people and which is easily attract the youths also. So this type of so many activities that Gandhi Ashram is trying to do to attract youths.
0: सर, स्नेहालय और गांधी आश्रम ट्रस्ट मिलकर सद्भावना साइकिल यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऐसे एक्टिविटीज इंडिया और बांग्लादेश के यूथ को कनेक्ट करने में कैसे हेल्प करती है?
1: एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट टू से एट दिस मोमेंट। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट जेएनजी स्टार्टेड द प्रोग्राम दैट इज अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट भेदभाव, अगेंस्ट भेदभाव। बाद में ये ट्रांसफर हो गया बाय द फंडामेंटल चेंज ग्रुप एंड अदर्स इन डिफरेंट वे, बट दैट वाज नॉट द डिमांड ऑफ द जेएनजी। दे डिडंट डिमांड द शेख हसीना शुड स्टेप डाउन। दिस वाज नॉट इनिशियली, इवन माय फैमिली मेंबर्स दे आल्सो जॉइन देयर। आई नो लॉट ऑफ माय चिल्ड्रंस फ्रेंड्स दे आर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम, बट फाइनली बाद में दे टोल्ड दैट वी आर इन ए रॉन्ग वे, वी आर मिसट्रैक्ट एक्चुअली।
0: ओके,
1: but so there are two types. After that Genji upper movement, the people who took over the university and other committees and so they are just anti liberation forces, so they will not take Gandhiji so easily, so in a good manner. Gandhiji ko acha nahi lagta unko, unko jinna acha lagta hai, so you understand. But still there are a lot of people who like Gandhiji in Bangladesh. About 15 districts every year Gandhiji's birth anniversary are followed. It was initially we tried, but now people are doing this. So still in Bangladesh.
0: Dono mentality ke log har jagah pe hote
1: hain. Har jagah mein hote hain.
0: अभी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ की खास तौर पर महिलाओं पर या फिर सोशल एनवायरनमेंट में कोई मेजर चेंजेस आए हैं?
1: ड्यूरिंग लास्ट 16 मंथ्स 17 मंथ्स आफ्टर 15 देयर वाज अ ह्यूज कैंपेन सो दैट द वुमेन शुड गो अंडर बुर्का, दे शुड फॉलो दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस द रिलीजियन. So in that case, there may be debate, may be debate. But as a human rights activist, I think that it is all of all the things that women demanded it not like that. That was boasted on them.
0: Okay.
1: So in many cases, I talked to so many women who wear normally burqa. When I talked with her in depth, found that it is not her choice.
0: Yeah.
1: This choice by somebody else. So, this happens for 16, 17 months, not even before that. So, it will take time to shift from here to a new dimension. But in Bangladesh, a lot of women are very progressive and
0: educated also.
1: Educated, about more than 50% are women. They are getting education. So that is the hope for us.
0: Sir, the last question. In future, aapka long term ka vision kya hai?
1: One thing is that there are two types of connectivity between two countries. One, G2G, government to government.
0: Yeah.
1: And other is people to people.
0: Yeah.
1: NGOs are the representative of the people, common people.
0: So
1: people to people connectivity should be increased more and more rather than the G2G.
0: Hmm.
1: There is some policies level. G2G means there are policy level their discussion.
0: Hmm.
1: But jo pran ka discussion, hridoy ka discussion, heart ka discussion jo hoti hai na, wo people to plug to contribute with them hoti hai. Aur ek thing hai, there are so many issues that cross-border issues.
0: Hmm.
1: If we have very good relation between NGOs of India and Bangladesh, it will be very easier to solve the problems.
0: Hmm.
1: Because a lot of people are coming here having no documents proper. They are going to the jail. So there are a lot of problems we faced earlier. Even Snehla also faced like that. Yes. So if we have a good connectivity between us, then we can easily contact with our government. You can easily contact your government.
0: Hmm.
1: Then things are very easier, become very easier. So which I think this for example that I cited and only example. There are other ways, other issues.
0: Hmm.
1: The common issues, the environment,
0: that
1: is common issues. Sundarban, common issues.
0: Hmm.
1: So, we can work together with all those issues.
0: Thank you so much, sir. Aapne bahut hi saral aur clear tarike se Bangladesh ki current situation, social changes aur India-Bangladesh relations ke baare mein apne thoughts hamare saath share kiye. Peace, harmony aur Gandhiwadi vicharon ke madhyam se jo aap kaam kar rahe ho, ye sach mein bahut hi zyada inspiring hai. We hope ki aane wale samay mein dono deshon ke beech friendship, understanding aur manavta ka rishta aur bhi mazboot hoga. Once again, thank you so much for joining us on our program.
1: Thank you so much. Thank you for inviting me here.
0: श्रोते हो आज आपण ऐकलात बांगलादेशातील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीवरती आधारित हा विशेष संवाद. आता वेळ झाली आहे निरोप घेण्याची. पुन्हा भेटूया गोष्टी तुमच्या आमच्या या कार्यक्रमात. तोपर्यंत ऐकत रहा रेडिओ नगर.

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

0: नमस्कार, मी रुपाली गदककर. सो ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा.
1: तुझे मेरे बारे में वो सब पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया. You know you've been my best buddy since forever, right?

0: आया आईगो आईगो आईगो ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया आईगो आईगो आईगो ये क्या हो गया
1: आईगो आईगो आईगो ये क्या हो गया
0: आईगो आईगो आईगो ये क्या हो गया
1: आईगो आईगो आईगो ये क्या हो गया
0: आईगो आईगो आईगो ये क्या

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।